होके भी महंगी शराब पीता। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना तो मुस्कुरा रहे, क्या गम है जिसको छुपा रहे, क्या गम है जिसको छुपा रहे, तुम इतना जो मुस्कुरा